बिल्कुल प्रोग्राम शायद मोरो संख्या तो वो रे वो बिल्कुल जांची दे अमीन वाले सिक्किम लिखना अमीन वाले नवी न नवी संदरा बिल्कुल डेर लिसनर विल कर हा शायद तो अमीन नवी की मैं ये ने की मगम चेन टपे दी तो बिल्कुल दर्शन लेके वाह डेर जो तुम्हाने वो

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91, Dera Ismail Khan, Radio Pegam 97.4, Pahadpur, and Radio Aman 88.4. अब एक नए दिन के साथ नई तारीख के साथ आज है 12 मई 2026. अब उसे पैर की 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही खास किस्म का सलाम हम आप सब लोगों को करते हैं, जो कि होता है चाय का सलाम यानी कि केसन का टी टाइम शो। जनाब तमाम सुनने वाले इन तमाम बड़े शहरों यानी कि टांक, डेरा इस्माइल खान और पहाड़पुर में तमाम सुनने वाले गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा एंड चाचीज, मामा एंड मामीज, दादा एंड दादी, नाना एंड नानी, आप सभी सुनने वालों को जनाब खलील ताबे शामान का ढेर सारा सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें और ढेर सारी सलामती की दुआएं मेरे तमाम तमाम हर अजीज लिसनर्स के नाम। तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब हमेशा की तरह, हर रोज की तरह मैं यही गुमान करूंगा कि जिस तरह मैं बिल्कुल जी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, चहचहाता हुआ जनाब बिल्कुल जी फाइन एंड शाइन हूँ, मेरे तमाम जाने वाले, तमाम फ्रेंड्स, तमाम दोस्त, तमाम लिसनर्स, तमाम के यूज बिल्कुल जी खैरियत और अफियत की जात होंगे और आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजार रहे होंगे जनाब। जिंदगी में आपको साल में 365 दिन जो मिलते हैं, जरूरी नहीं होते कि 365 के 65 दिन ही आप लोगों के लिए खुशी के हों, ठीक है जनाब, ये हो नहीं सकता, ऐसा कोई दुनिया में आया ही नहीं है, ठीक है जनाब। जब इस दुनिया के सबसे बड़े इंसान के जिनकी वजह से ये दुनिया बनाई गई, उनकी उनकी जिंदगी के अंदर भी गम आए, वो भी अपनी जिंदगी के कुछ दिनों में, कुछ सालों में जो है वो अफसुरदा रहे, सैड रहे, परेशानी में मुब्तला रहे, मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। तो एक आम इंसान क्या है, क्या इंसान ये सोच सकता है कि साल के 365 दिन वो खुशहाल रहेगा, अब वो जनाब हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहेगा? बाज़ुकात जो है हम अंदर से तो जो है खुश नहीं होते, लेकिन बाहरी तौर पर जो है, बैरूनी तौर पर जो है हमारे चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट का एक जो है निकाब चढ़ा हुआ होता है। और कहा जाता है जो आर्टिस्ट होते हैं, जो फनकार होते हैं, ये तो उनका कमाल होता है कि जनाब जब वो स्टेज पर आते हैं तो मुस्कुरा रहे होते हैं, वो ड्रामा कर रहे होते हैं तो मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन नहीं पता होता कि उनके घर आज क्या बीती है, उनके घर में, उनकी फैमिली में आज ऐसा क्या हुआ है। तो सामिने किराम, ये जो जिंदगी की उतार चढ़ाव है, खुशी है, गमी है, ये क्यों होता है? तो जनाब इसका जवाब ये है कि जनाब अगर एक ही चीज तसलसल के साथ हो तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। अगर सारी जिंदगी आप खुशहाल रहें, खुशी रहे और जनाब आपको गम ना मिले तो खुशी की अहमियत खत्म हो जाएगी। यूं इस तरीके से आपको जिंदगी में कहीं कहीं अगर जो है दुख का सामना रहता है तो आप फिर खुशी के मुतलाशी रहते हैं और खुशी के उन लम्हों को फिर दुआओं में मांगते हैं, खुशी के उन लम्हों को जनाब अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगते हैं कि या अल्लाह मेरे लिए सुकून के दिन कब आएंगे, या अल्लाह मेरे लिए खुशी के दिन कब आएंगे। तो भाई अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए, जिस भी इंसान को पैदा किया है उसको ऐसे नहीं छोड़ दिया है, हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक आजमाइश रखी है और वो जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए उन्हीं आजमाइशों से गुजर रहा होता है। लेकिन एक आपको बात बताते चले जनाब कि ये जो आजमाइश है, कुछ लोग इस आजमाइश से बहुत ही आसानी से गुजर जाते हैं, कुछ लोगों की जिंदगी बड़ी तंग हो जाती है। तो कहते हैं कि बाज़ुकात ये नहीं होता कि आपका रिस्क तंग है तो आपके ऊपर जो है इस वक्त जो है आजमाइश चल रही है, आपकी औलाद नाफरमान हो गई है तो आपके ऊपर आजमाइश है, आपको औलाद नहीं मिल रही तो आप आजमाइश में हैं, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है तो आप आजमाइश में हैं, आपके ऊपर कोई बीमारी है तो आप आजमाइश आपके ऊपर आई हो नहीं। बाज़ुकात सामीन इकराम आपकी जिंदगी में आने वाले कुछ लोग भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होते हैं, ठीक है जनाब। हम लोगों को देखकर उनके रवैयों को बाज़ुकात कोई बंदा आपकी जिंदगी में जहर डाल देता है, कोई बंदा आपकी जिंदगी का सुकून गारत कर देता है, कोई बंदा आपकी 24 घंटे की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, आपको डिप्रेशन में ले जाता है, उस बंदे की वजह से आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं। तो वजह क्या होती है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे के जरिए, अल्लाह ताला उस बंदे के जरिए, उस इंसान के जरिए, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, एनीवन, कोई भी रिश्ता हो सकता है, अल्लाह ताला आपको उस आजमाइश से गुजार रहे होते हैं। लेकिन ऐसे मौकों के ऊपर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो बंदा मुझे तकलीफ दे रहा है
हो सकता है ये मेरी आजमाइश हो, और आजमाइश में कामयाब कौन लोग होते हैं? जो सबर करते हैं। तो भाई अगर जिंदगी में आपको भी किसी ऐसे सामने का ऐसे बंदे के साथ सामना है कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बहुत अरसे से अजीरन है, तो ये गुमान कीजिएगा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो, और अल्लाह ताला देखना चाह रहे हैं कि मेरा बंदा कहाँ तक सबर करता है। तो सबर करने वाले के साथ हमेशा अल्लाह ताला साथी किसका होता है? इन्नल्लाह मसाबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हो। इस आयत को याद रखिएगा जिंदगी में, जब कभी भी ऐसी ही मुश्किल में आप फंस जाएं तो इस आयत को याद रखिएगा कि बेशक अल्लाह ताला जो है वो सब्र करने वालों के साथ है, यानी कि जीत आपकी होगी। अगर ऐसे मामलात में जहां पर कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं, आपका सुकून गारत है, आपकी 24 घंटे की जिंदगी अजीरन है, तो जहां पर इस मौके के ऊपर जब आप अपने रब से इल्तिजा करेंगे कि या अल्लाह मेरी ये आजमाइश को खत्म फरमा, और जब सब्र करेंगे तो जीत फिर आपकी ही होनी है।

जी सर, मेरे ख्याल मुझे कहते हैं खलील दावेश यमान, और इस वक्त आपके आसपास यानी कि जिस रीजन में हम मौजूद हैं, यहाँ के तीन बड़े रेडियो स्टेशन, रेडियो अमन टांग, ग्लोबल एफएम 91 डियर इस्माइल खान, और रेडियो पहाड़पुर यानी के रेडियो पैगाम 97.4 की, बिल्कुल जी, तीनों फ्रिक्वेंसी से एक साथ बरह रास्त, और ये तीनों फ्रिक्वेंसी अटैच है इस वक्त केसन स्टूडियो के साथ, और आप इस वक्त सुन रहे हैं केसन का टी टाइम सुन रहे हैं जनाब। टी टाइम में ढेर सारी बातें होती हैं, चाय की भी बातें होती हैं, आपकी और मेरी बातें भी होती हैं, और साथ में खूबसूरती की और सेहत की बातें होती हैं।

जनाब जी जनाब, हेल्थ हेल्थ की बातें, सेहत की बातें और खूबसूरती की बातें, क्योंकि जनाब केसन का जो सर्कल है वो इन्हीं दो चीजों के दरमियान है। कि जनाब सबसे पहली बात तो यह, केसन का स्लोगन है केसन अच पाकिस्तान के प्यारा लगना, तो आप सब क्या है, तो जनाब हम आपके लिए हर वो चीज बनाएंगे जो आपकी खूबसूरती में रुकावट है, जो चीज आपको खूबसूरत नहीं होने दे रही है जनाब, व्हाई दिस कॉल अवेरी। जनाब क्यों खूबसूरत नहीं हो रहे आप, क्यों लोग आपकी तारीफें नहीं कर रहे, क्यों लोग आपके आगे पीछे नहीं फिरते जनाब? तो इसकी वजह यही है कि जनाब आप अपनी केयर नहीं करते हैं, अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं करते हैं। और वो कहते हैं ना, बहुत ही पुराना जुमला है कि खर्चा होगा, खर्चे होंगे तभी तो चर्चे होंगे। तो जनाब अपनी स्किन केयर को बेहतर कीजिए कि जनाब, और गर्मी के मुताबिक केसन के उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब कीजिए जो आपको धूप से बचाकर, धूप की शिद्दत से बचाकर, आपको हमेशा की तरह सर्दियों के मौसम की तरह जनाब प्यारा और वाइट और खूबसूरत रख सकते हैं। और जब हेल्थ की बात करते हैं, कल हमारे साथ एक हमारे यूजर जो है नायाब, उनका नाम है, केसन शॉप पर आई हुई थी और अपने जो है मियाऊ के साथ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ है जी, मियाऊ मियाँ को कहते हैं जनाब, टांग वाले परेशान मत हो जाना कि ये मियाऊ तो बिल्ली होती है जी ना, हमारे हमारे यहाँ मियाऊ जो है मियाँ को कहते हैं, मतलब एक हस्बैंड की बात हो रही है। तो वो अपने हस्बैंड के साथ आई हुई थी और कह रहे थे कि भाई मैं अपने हस्बैंड को लेके आई हूँ केसन शॉप के ऊपर, कि इन्होंने केसन शॉप नहीं देखी हुई थी। तो मैंने कहा आज मैं आपको दिखा दूं, मेरी सारी चीजें आपने यहाँ से लानी है। तो वो स्पेशल आई हुई थी जनाब, हमारी जो हर्बल फार्मूला एक प्रोडक्ट है, वेट कम पेट कम। तो वो कह रहे थे कि भाई मेरा ना पिछले 3-4 दिन से ना मेरी फक्की खत्म है केसन वाली, वेट कम पेट कम। तो जैसे ये खत्म होती है मुझे इतनी कोई शदीद किस्म की भूख लगती है, मुझे समझ नहीं आती, मैं घर के सारे फ्रूट खा जाती हूँ, ठीक है जनाब, टोस्ट पड़े होते हैं फ्रिज के अंदर वो खा जाती हूँ, जूसेस नहीं छोड़ती, सलाद नहीं छोड़ती, यानी कि बस ये फक्की खत्म होती है तो बस यूं समझ लें कि मेरे घर वाले मेरे सामने हाथ बांधते हैं कि अम्मा जी अपनी फक्की ले आओ और हमारे ऊपर रहम करो। यानी कहते हैं कि यार ये इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है आपकी, वेट कम पेट कम जो फक्की आपने बनाई है, बिल्कुल इसको जब खाते हैं तो भूख ही खत्म हो जाती है। ये हमने बेसिकली मोटे लोगों के लिए बनाई है भाई, जिनका गोश्त बहुत ज्यादा है, सॉरी जिनकी चर्बी बहुत ज्यादा है, ठीक है जनाब। तो ये चर्बी किन लोगों के ऊपर आती है, जो एक्स्ट्रा खाते रहते हैं, यानी उनको जरूरत ही नहीं है खाने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो खाते हैं, और जब एक्स्ट्रा खा जाते हैं, यानी कि जिस तरह वो नायाब बता रही थी कि भाई मैं इतना खाती हूँ कि भाई समझ नहीं आती मुझे ना, लेकिन जब ये फक्की मेरे पास होती है केसन की वेट कम पेट कम, तो मैं जब नाश्ते के साथ, नाश्ते से पहले इसका एक चम्मच खा लूं ना, यकीन करें मेरा आधा नाश्ता रह जाता है। तो मैं डर गई थी, कहते पिछले 4 दिनों से मैं डर गई थी कि मैंने कहा इतनी मुश्किल से मैंने वजन कम किया, वेट कम कम पेट कम से, ये तो फिर मैं इतना ज्यादा खाने लगी हूँ तो फिर मेरा वजन बढ़ जाएगा। तो वो कहते कि 4 दिन के वक्फे के बाद भाई आज मैं इधर ये शॉप दिखाने के रही थी अपने मियाऊ को, इधर से आके मेरी फक्की और मेरी चीजें ले जाना। तो कहने का मकसद है, अच्छा जी कुछ लोग हमें कहते हैं कि भाई आप ना लोगों के जो है पैगाम रिकॉर्ड करके चलाया करें। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पिछले 4 साल से कंपनी के साथ मौजूद है, हमारे पास इतने ज्यादा लोगों के रिव्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत आजादी बताने जा रहा हूं, जो हकीकत है, हकीकत यह है कि लोग आके आपको रिव्यू देते हैं, फीडबैक देते हैं, हमारी शॉप के ऊपर आके होते हैं, भाई इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट थी, अब हमने कैमरा तो उठाया नहीं होता ना, हम तैयार बैठे होते हैं कि इसकी बात को रिकॉर्ड करना है। अच्छा जब हम उन्हें कहते हैं ना कि बहन जी ये वाली बात जो अभी आपने की है ना, ये हम रिकॉर्ड करते हैं आपके, थोड़े कहते नहीं नहीं भाई वो मुझे इजाजत नहीं है घर से, वो मुझे नहीं। तो मैंने एक चीज अपनी तरफ से असेस की है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई बनावटी ड्रामा कर दें, 4-5 बंदों को बिठा दें, उनके रिकॉर्डिंग कर लें तो और बात है, जो एक्चुअल लोग होते हैं वो फीडबैक बहुत कम देते हैं। जो एक्चुअल लोग होते हैं ना, यानी कि जिनको फायदा मिला होता है, वो बड़े शर्मीले होते हैं, वो नहीं बता सकते कि भाई जो है मुझे हाँ मैंने ये खाई चीज और मुझे इतना फायदा मिला और इतना फायदा मिला। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास बहुत ज्यादा रिव्यूज होते हैं लोगों के, ठीक है जनाब। एक दफा मैंने अपने एक असिस्टेंट को कहा, मैंने कहा जब कोई आके फीडबैक किसी प्रोडक्ट को देते हैं ना, आप रिकॉर्डिंग कर लिया करो, ठीक है जनाब। तो वो फिर भी बुरा लगता है कि किसी ने आपकी किसी की इजाजत बगैर, आप किसी की कोई भी, ये तो प्राइवेसी है ना, किसी की आवाज, किसी की अदायगी, किसी का फीडबैक, किसी की ये उसकी प्राइवेसी है, तो इसको भी हम ब्रीच नहीं कर सकते। तो भाई कहने के उन लोगों को मैं कहना, जो उस दिन कह रहे थे कि भाई आप लोगों की रिकॉर्डिंग करके इधर सुनाया करें, तो वो तो आसान सा काम है, 10 बंदों को बिठाकर भी बंदा उनकी रिकॉर्डिंग ले सकता है, लेकिन फैक्ट फैक्ट होता है और हकीकत जो है वो मैंने आपके सामने रखी है। और मेरा एक अकीदा जो बिंग मुस्लिम कारोबार के हवाले से है,
कि कारोबार में कभी झूठ ना बोलें। आपके कारोबार की सारी बरकत खत्म हो जाती है जब आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के आप कारोबार को, यकीन कीजिए ये मेरा जिंदगी का असूल है। मैं आपको एक बात बताऊं कि आज से 2 साल पहले की बात है, तो एक लिसनर ने कॉल की और उसने मुझे कहा कि भाई रमजान में तो आप प्रोग्राम नहीं करेंगे ना, रमजान में उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम तो नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं, रमजान में भी करेंगे, ऐसी कौन सी बात। कहते वो झूठ जो बोलना पड़ता है फिर रोजा खराब नहीं होगा। मैंने कहा हम तो नहीं झूठ बोलते भाई, हम तो अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, कंपनी के हवाले से कभी कोई झूठ नहीं बोलते, जो हकीकत होती है वही आपके सामने रखते हैं। तो कुछ लोगों के ये कॉन्सेप्ट इस तरह बने हुए हैं कि यहाँ पर कहानियां सुनाई जाती है, ठीक है जनाब की कहानियां, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक जेन्युइन कंपनी और हक और सच के ऊपर ठहरी हुई कंपनी, और जब ये बातें जो आपको हम बताते हैं ना, जब आप हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है जनाब। अब जैसे ये वेट कम पेट कम फकी है, वेट कम पेट कम, ये बेसिकली हमने भाई वजन कम करने के लिए बनाई,

जी जनाब, तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट हमारी वेट कम पेट कम जो है ये भाई सिर्फ मोटापे के लिए नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैं भूख की बात आपको कर रहा था, जो शुगर का मरीज होता है उससे आप पूछे ना या उसके घर वालों से पूछे, तो उस बेचारे को इतनी भूख लगती है रातों को उठ उठ कर, वो सूखी रोटी भी नहीं छोड़ता होगा मेरे ख्याल में। यानी कि शुगर के मरीज कितनी भूख लगती है, लेकिन अगर शुगर का पेशेंट ये हमारी वेट कम पेट कम इस्तेमाल करेगा तो उसकी भूख कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है जनाब, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसके अंदर जो अज्जा मौजूद है वो यूरिक एसिड को डिक्रीज, उसका वैल्यू डिक्रीज करते हैं, उसको कम करते हैं। ठीक है जनाब, इसके साथ साथ जो है ये हाजमे को ठीक करती है। और ये स्टार्ट वो मैं इसलिए बता रहा हूँ इस प्रोडक्ट के हवाले से कि कल का वो फीडबैक था कि भाई ये भूख को कितना कंट्रोल करती है, तो भाई वो तमाम लोग जो एक्स्ट्रा खाते हैं चाहे शुगर की बीमारी की वजह से खाते हैं, क्योंकि शुगर के पेशेंट भी बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं और उनकी वजह यही होती है कि उनको बहुत भूख लगती है और वो एक्स्ट्रा खाते हैं, यानी कि उनके जिस्म को जरूरत नहीं होती। ये एक एक जायज भूख का लगना बड़ी बात नहीं होती, भूख लगनी चाहिए, अगर आप खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूख लगती है जो कि नाजायज भूख होती है जी। तो आपकी नाजायज भूख को खत्म करने वाली ये प्रोडक्ट वेट कम पेट कम को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भूख नॉर्मल हो जाएगी। हाँ जनाब, आपके महीने का एक एक बोरी जो लगती है वो सही लगेगी, डेढ़ बोरी नहीं लगेगी, क्योंकि डेढ़ बोरी खाने का फायदा कोई नहीं है ना, उसने आपके जिस्म में एनर्जी नहीं बनानी बल्कि चर्बी बनकर आपको मोटा कर देना है। तो जनाब थैंक यू सो वेरी मच जी। पहाड़पुर में जो लोग हमारी ये प्रोडक्ट वेट कम पेट कम इस्तेमाल कर रहे हैं या डेरस मिलखान में इस्तेमाल कर रहे हैं, टांक में अभी लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, नया पाकिस्तान बनाना है टांक वालों क्या।

जी जनाब, मेरे तक बिल्कुल ये डेली का फीडबैक पहुंचता है, और स्पेशली जो नया हम एरिया ओपन करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई लोग भाई कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जनाब बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं टांग के लोग। मैं उनसे दिल से शुक्रगुजार हूं कि नई कंपनी हमने इंट्रोड्यूस करवाई और आपने आते ही जनाब हमारी प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह आपको मजा आ रहा होगा हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। चाहे आप लोग केसन के फेस वॉश खरीद चुके हैं, जैसे कि 5 किस्म के हमारे फेस वॉश हैं, उनमें एक गो पिंपल फेस वॉश है एक्नी को खत्म करने के लिए, दूसरा हमारा लवली फेस वॉश है व्हाइटनिंग के लिए, प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश है जनाब। इसके साथ साथ हमारे सोप अवेलेबल हैं, मिल्की सोप है, साथ में जो है हमारा जाफरान सोप है, कोजिक एसिड सोप है, या फिर गो पिंपल सोप है। और क्रीमों के हवाले से जनाब बहुत ही अमेजिंग किस्म के हमारे 2 फार्मूले हैं, एक ग्लूटा वाइट क्रीम है जो कि 350 रुपए की है, और दूसरी हमारी जाफरानी फार्मूला है जो कि 320 रुपए की है। दोनों क्रीमें मौजूद हैं आप लोगों के पास, साबुन भी मौजूद है, फेस वॉश भी मौजूद है, जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपने चेहरे के ऊपर विजिबल रिजल्ट जो है पहली ही दफा लगाने से जो है आप जब हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो फीलिंग आएगी जनाब, फील आपको आएगी कि जनाब क्या चीज आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है जनाब। और दूसरी प्रोडक्ट जो आपकी स्किन के हवाले से बहुत ज्यादा अहम होती है, और आज मुझे एक डॉक्टर साहब हैं ये रेडियो पैगाम इस वक्त जो है ये केज का इलाका हो गया बनकुरई, या फिर साथ में रोडी ख्याल का इलाका, हाँ जी ना रोडी ख्याल, और साथ में जो है यारे के इलाका है वहां पर भी सुना जा रहा होगा। तो आप यकीन कीजिए आपके रोडी ख्याल के इलाके से आज 2 जो है वहाँ के डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि भाई आपकी चीजें बहुत ज्यादा लोग मांग रहे हैं, क्या है आपकी कंपनी। तो हमने उनको डिटेल बताई कि हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी सिंपल इज दैट कि जनाब लोगों को प्यारा बनाने वाली कंपनी है। जी जनाब बिल्कुल जी, प्यारा सही सुना आपने, केसन कंपनी आप लोगों को ढेर सारा प्यारा बनाने वाली कंपनी है, और इसके जो प्रोडक्ट मौजूद हैं वो आपको ढेर सारा, हाँ जनाब बिल्कुल जी, ढेर सारा प्यारा बनाते हैं। और आप प्यारे क्यों ना लगे, क्योंकि प्यारा लगना तो आप सबका हक है। और सबसे बड़ी बात क्या, हमारा जो पैगाम है वो ये है।

0: जी जनाब, कुदरत की पहचान जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है जनाब, नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि कल आपको हमने बहुत ही ब्रीफली बताया कि भाई जाफरान कुदरत के खजानों में से खजाना है, और इसी खजाने को ये ब्यूटी का खजाना है। और मैं आपको बताऊं, मजे की बात बताऊं कि पुराने वक्तों में जब ये चीजें नहीं होती थी, क्रीमें नहीं होती थी, फेस वॉश नहीं होते थे, सोप नहीं होते थे, तो खूबसूरती को निखारने का हर उम्र में, हर दौर में लोग प्यारा, हर दौर के अंदर हर इंसान प्यारा लगना चाहता है, और ये उसकी दिल की ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा प्यारा नजर आए। तो ये टोटके शुरू से आते आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये तीन चीजें जो हैं कुदरत के खजानों में, एक जाफरान, दूसरा संदल और तीसरा हल्दी, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपकी खूबसूरती की जमानत हैं। अगर इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और ये चीजें किसी भी तरीके से आपकी स्किन रूटीन का हिस्सा नहीं है, ना ही आपकी जो कॉस्मेटिक की, आपकी जो स्किन केयर रूटीन है, जो आप अपनी स्किन को नरिश करते हैं, उसमें जाफरान भी नहीं है, उसमें संदल भी नहीं है, उसमें हल्दी जैसी भी कोई चीज नहीं है, तो आप कुदरत की दस्तरस से या कुदरत के खजानों जो है उनसे बहुत दूर हैं इस वक्त। ठीक है जनाब, इन चीजों को, ये तीन चीजें, अब इनको एक दिन मैंने पाठपुर के ऊपर प्रोग्राम किया था और स्पेशल आप लोगों को बताया था कि भाई ये तीन चीजें, जाफरान, संदल और जो हल्दी है, इसको किस तरीके से आप मैनुअली अपने घर के अंदर जो है किचन की चीजें है ना, है जनाब,
1: सुबह की पहली
0: कैसे आप यूज कर सकते हैं, वो आपने आपको प्रॉपरली बताया था। लेकिन आजकल के दौर में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है ना कि जनाब वो चीजें खरीदें, पसारी के पास जाएं और फिर उनको मैश करें अरके गुलाब के अंदर, दही के अंदर, दूध के अंदर, और फिर इनको अपनी पर्सनल रूटीन का हिस्सा बनाए, तो मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा। तो भाई इस दौर के अंदर खेसन कुदरत के बहुत पास है, और हम कहते हैं कि कुदरत के खजानों के ऊपर अगर आपको कोई कंपनी दस्तरस दे रही है ना, तो वो केसन है। और केसन की रेंज आप उठाएंगे तो आपको हर तरह के कुदरत के खजाने आपको हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है जनाब, कुदरत की नेमतें, अल्लाह की वो नेमतें जो इस दुनिया में मौजूद हैं, और उनको इस्तेमाल करने से आप प्यारे हो सकते हैं। आप केसन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके, हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके, चाहे वो फेस वॉश हैं, चाहे हमारे सोप्स हैं, चाहे हमारी क्रीमें हैं, जो भी हैं।
2: फेस वॉश एंड सोप।
0: जी जनाब, उनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को नरिश कर सकते हैं। आप हमारे, आपके पास हमारा कांटेक्ट नंबर अगर है, अगर नहीं है तो अभी नोट कीजिएगा। कल भी एक कंप्लेंट आ रही थी कि नंबर नहीं बताते आप लोग। अच्छा जी, नंबर नोट करिए जिसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं, 03-44-936-3366, 03-44-936-3366। और दूसरा जोंग का हमारा नंबर है जनाब, इसको भी आप डायल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं, 03-13-798-4544।
2: पेट में गड़बड़, दिल भी थमे।
0: हाँ जनाब, सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है भाई, अगर आपके पेट में भी गड़बड़ रहती है। हाँ जी, खाना खाने के बाद आपको आपका पेट जो है भारी भारी सा लगता है। अच्छा, ये चूंकि इस वक्त 3 FM अटैच है ना हमारे साथ, तो इस वक्त हमारी आवाज तकरीबन गांव के अंदर, बहुत ज्यादा गांव जितने भी है ना, ये पाठपुर के साथ जितने गांव हैं वो भी सुन रहे होंगे, टांग के साथ जितने गांव हैं वो भी सुन रहे होंगे, और डेरस मिलखान FM के साथ जितने गांव हैं वो भी सुन रहे होंगे।
2: एक सहारा,
0: एक चीज जो है, आप भाई अपने डॉक्टरों को मजबूर करें, आपके गली कूचों में बैठने वाले जो डॉक्टर है ना, ठीक है जनाब, जो मैदे के सिरप बेचते हैं, आपने डॉक्टर के वो कहना है कि भाई हमें केसन का मैदे का सिरप मंगा कर दें, केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप। ठीक है जनाब, वैसे बहुत सारे डॉक्टर जो है हमसे ले भी रहे हैं ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये फार्म 7 अप्रूव्ड है। ठीक है जनाब, और कोई भी अगर सुन रहा है तो कोई यूनानी दवाई नहीं है भाई, ये फार्म 7 अप्रूव्ड है, ड्रैप से इनलिस्टमेंट है हमारे इस प्रोडक्ट की, मुकम्मल तौर पर एक ऑथेंटिक फार्म 7 अप्रूव्ड हमारी प्रोडक्ट है, केसन हुकूमत पाकिस्तान से बिल्कुल ये लैब से तस्दीक शुदा हमारा ये सिरप है, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप, कि जब आपके पेट में गड़बड़ हो
2: केसन की जबानी,
0: तो जनाब केसन के हाजमा कंट्रोल सिरप को इस्तेमाल कीजिए।

0: जी जनाब, आप हमारी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए आप लोगों के एसएमएस में एसएमएस पढ़ना चाह रहा था, लेकिन एसएमएस से पहले ही एक कॉल आ गई, तो जनाब इस कॉल को लेते हैं क्विकली। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द केसन टी टाइम शो।
1: वालेकुम
0: सलाम खलील भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, की चंगे शब्बीर उस्ताद फ्रॉम केज कोल हैं सही? हमारी डेर असमिल खान की एक लिसनर हैं, ग्लोबल एफएम 91 वाले जो लिसनर सुन रहे होंगे वो उनको बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, वो भी हमारे मुकाबलों के अंदर होती थी, सनम पठानी हैं जनाब, नाम भी उनका नाम सनम था लेकिन मैं उनको कहता था सनम पठानी। तो आज वो जो है हमारी शॉप पर आई केसन शॉप के ऊपर, और उन्होंने कहा भाई मुझे ना टांक वाली बिस्मिल्ला ऑफर चाहिए। तो मैंने कहा भाई ये तो टांक वालों के लिए बिस्मिल्ला पैकेज है, डेर वालों के तो नहीं है। कहते मैं तो असल में तुम्हें टांक क्यों है जनाब, कहते असल में तुम्हें टांग क्यों, मेरा अपना जो शहर है वो तो टांग है, हम यहाँ पर तो परदेसी हैं, हम आए तो मुझे यकीन करें वो मुझसे वही टांग वाली ऑफर लेके गई। उसने कहा ये टांग वालों के लिए है, तो कहो तो मैं शनाख्ती कार्ड भी दिखा सकती हूँ, मैं टांग की हूँ और मुझे टांग वाली ही ऑफर चाहिए। तो सनम जो है वही टांग की ऑफर जो है हमसे लेके गई है, जो कि 1,000 रुपए की ऑफर है, उसके साथ दो चीजें हम फ्री दे रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपए की चीजें खरीदेंगे तो उसके साथ क्या फ्री मिलेगा आपको, एक जाफरानी साबुन फ्री मिलेगा और साथ में आपको जो है पेन परफ्यूम मिलेगा। अच्छा, ये टांग से ताल्लुक है ना सनम का, तो सनम भी रीसेल करती है हमारे प्रोडक्ट्स को, और बहुत ज़्यादा अपने इलाके के अंदर इन्होंने ना सिर्फ खुद यूज़र हैं बल्कि वो अपने इलाके के लोग ताकि उन जब वो उनसे रब्ता करते हैं कि भाई हमें भी ये चीज़ें मंगवा दें तो वो मंगवाती हैं। तो टांग वालों के लिए ये बिस्मिल्ला पैकेज जो हमारा चल रहा है भाई, 1,000 रुपए की प्रोडक्ट खरीदें, आपकी मर्जी, अपनी मर्जी के खरीदें, ठीक है जनाब, अपनी मर्जी के कोई भी 1,000 रुपए की चीजें खरीदें और साथ में दो चीजें फ्री हासिल करें, एक जाफरानी साबन और एक हमारा परफ्यूम अकबर या जारा आपको फ्री मिलेगा, ठीक है जनाब। और ये कहाँ से मिलेगा, मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा, टांग के अंदर है जनाब, सदाम प्लाजा, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको शॉप नंबर 4-5 है, मंसूर जनरल स्टोर हाजी सरबत खान का ये सेटअप है, ठीक है जनाब। यहाँ पर ये ऑफर सिर्फ इधर ही है, ठीक है, टांक में और किसी दुकान के ऊपर नहीं है, ये हमारे जो कि मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ये हमने ऑफर इधर दिए। साथ में 10% भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि आपने 1,200 की चीजें खरीदी, 1,200 नहीं देंगे आप, ठीक है जनाब, उसके ऊपर 10% कटवाएंगे, 10% काटेंगे तो उसमें हो सकता है आपको 80-90 रुपए और बच जाएंगे, ठीक है। तो आपको 1,200 नहीं देना पड़ेगा, आपको 1,100 देना, 1,100 देंगे 1,200 के बजाय, और उसमें दो चीजें भी आपको फ्री मिलेंगी। इतने मेहरबान आज तक हम किसी के ऊपर नहीं हुए, जितना भी टांग वालों के ऊपर हुए हैं। तो टांग वाले भी अपना जोश खरोश दिखाएं जिस तरीके से वो खरीद रहे हैं, क्योंकि मुझे मुजीब भाई जो है हर रोज पिक्चर भेज रहे होते हैं, जो लोग भी लेके जा रहे होते हैं, वो हमने बैग भेजा है, केसन का शॉपिंग बैग है जिसके अंदर ये चीजें आपको दी, तो वो फिर मुझे बैग के साथ ही पिक्चर भेजते हैं कि ये बंदा आपका जो है ये गिफ्ट बैग लेके जा रहा है। तो जनाब ये ऑफर टांक वालों के लिए है, तो जरूर भाई फायदा उठाए, ठीक है जनाब, फायदा नहीं उठाएंगे तो भाई हमें फायदा हो जाएगा, हमारी चीजें बच जाएंगी और एक दिन आएगा कि यानी कि हमारा पैकेज जो है वो टांक में खत्म हो जाएगा। दिल राज हमें सुन रही है जनाब, बहुत शुक्रिया, और कहते हैं कि नुमान भाई को स्पेशल सलाम दीजिएगा, तो अगर सुन रहे हैं नुमान भाई, तो आपको टांग से सलाम आ गया जनाब।
2: केसन गो पिंपल एंटी एक्ने फेस वॉश एंड सोप।
0: अच्छा जी, सलाम भाई कैसे हो, मैं 2-3 दिन से प्रोग्राम में नहीं आ सका, इसलिए आज 10 मिनट पहले से सुन रहा हूँ कि आपसे पहले पहले छोटी छुट्टी मांग लो, आप तो आपके प्रोग्राम की आदत पड़ गई है, बहुत अच्छा जी, बहुत आदत पड़ गई जी जनाब, केसन शो की जब भी केसन चलता है तो लोगों को इसकी आदत ही पड़ जाती है, ठीक है,
2: बालों के हर मसले,
0: अच्छा जी, और मजा आता है सुनकर, और कभी हमारे लिए भी दुआ कर लिया करो, सुना सब सुनने वालों को मेरी तरफ से जो है सलाम कह रहे हैं, ठीक है जनाब। कौन है, रोनी है पहाड़पुर से हमें सुन रहे हैं जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, और एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें मौका देते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम हलील सर, क्या हाल है
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब, असद है हमारे साथ, अंकल असद
3: जी, बिल्कुल असद फ्रॉम टांक, बात आई थी जनाब
0: जी जी,
3: ये जो सदाम मार्केट कहते हैं ना,
0: हाँ हाँ,
3: ये सदाम मार्केट उसका बेटा है, असल में ये मार्केट रमजान मार्केट से बहुत ज्यादा मशहूर है, उसका वालिद साहब का नाम था रमजान।
0: अच्छा जी, ठीक है,
3: तो वो फौत हो गया तो उन्होंने सदाम मार्केट रख लिया ना,
0: ठीक है,
3: तो साथ साथ रमजान मार्केट अगर कहा करे, पुराने लोग अक्सर लोग रमजान मार्केट के नाम से इसको पहचानते हैं।
0: अच्छा ठीक है, ठीक है, बस जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर ने लिख कर दी हैं जो बातें उन्होंने बोला है कि सदाम प्लाजा है, तो हम
3: ठीक है, अभी अभी उन्होंने सदाम रख दिया बेटे का नाम करने लगे, पहले मशहूर लोग सदाम रमजान मार्केट ज्यादा बेहतर जानते हैं।
0: अच्छा जी, रमजान मार्केट, चलो जी, आपने तस्दीक कर दी, बहुत शुक्रिया, इन्होंने तस्दीक कर दी हमारी, तो भाई रमजान है जनाब, सदाम प्लाजा भी है, और ये मैं इसलिए साथ में एड्रेस बता रहा होता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस के साथ है, ठीक है जनाब। और रोनी पाटपुर से हमारे साथ थे जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। और इसके अलावा और कौन है हमारे साथ, आपके मैसेजेस बिल्कुल जी मेरे पास आए हुए हैं, और सलाम टू, हाँ जनाब, इश्क दा बंदा लगा दें, अच्छा जी इश्क दा बंदा, ये हो गया जनाब, ये कलाम भी हमारे पास होता है, हमारी क्यू लिस्ट में होता है। और नजर हसन जी हमारे साथ मौजूद हैं, और आते ही उन्होंने फरमाइश की है और कोई बात नहीं की है, ठीक है जनाब, और नेक्स्ट कॉलर को मौका दे रहे हैं जनाब, देखते हैं कौन है, अस्सलाम वालेकुम।
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیل بھائی کی میں حال والے ٹھیک ٹھاک چنگے بیٹھے.
0: بڑی لمبی عمر ہے آپ کی.
4: ماشاءاللہ میں تو یاد کر رہا ہوں, اور وہ جو ابھی لسنر کر رہے تھے 10 منٹ پہلے سے میں بھی سن رہا ہوں انشاءاللہ ریگولر.
0: اچھا جی ٹھیک ہے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنا جینا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ میں نے کہا لمبی عمر

0: शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और जी, पश्तो आपको आती है कि नहीं आती?
1: घुसा रहा है।
0: अच्छा जी, आप माशाल्लाह हमसे वेट कम पेट कम जो हमारी फकी है वो बहुत ज्यादा लेके जाते हैं, लोगों को भी देते हैं। थोड़ा सा पश्तो में टांक वालों को बता दें भाई, ये कितनी जबरदस्त चीज है।
1: बड़ा मुश्किल सवाल है। टांक मलगरी तवाय हम इंशाल्लाह दे वेट कम फकी वाखला और दा सही कार कई मैदा कोलेस्ट्रोल चंगे कीमा डिस्टरबेंस बॉडी के टोल डिस्टरबेंस खत्म कीजिए इंशाल्लाह। खासकर दे खत्म कीजिए शुगर लेवल कंट्रोल के कई और वजन भी कम कई खाम खा इंशाल्लाह। मिज मलगरी मिजलूर मिज टोल रिश्तेदार उखड़ल बस जबरदस्त पॉजिटिव रिजल्ट रगली दी।
0: हाँ जी बिल्कुल, ये
1: टोल अर्दुन के वेरोरोन मलगरी अचानक वाला था मशवरा फिर कहो खाम खा वाखला इंशाल्लाह गारंटी खबर आता काम न कई पैसे इंशाल्लाह कंपनी खलील भाई अकबल वर कई जबर कमा जर जाबेदार हैं
0: दा जिम्मेदार हम। ठीक है जनाब, ये
1: टोल मलगरी था सलामीना शबीर भाई आरवी सैयद हसन शाह कारगा टोल मलगरी खरून वरून लिसनर टोल था सलामीना वर कमा।
0: ओके जनाब, बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू सर,
0: बहुत शुक्रिया जनाब। और नजर असल ये हमारे क्यों मैंने इनसे पश्तो बुलवाई है कि आप यकीन करें, अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल में ये हमसे 30,000 से ज्यादा की ये फकी ले चुके हैं। ठीक है जनाब, और पहले इन्होंने पहले मजे की बात ये कि पहले सिर्फ ये 15 दिन वाली लेके गए थे, 15 दिन वाली, ठीक है जनाब, फिर उसके बाद 30 दिन वाली, और फिर उसके बाद जैसे इनके घर में रिजल्ट मिले तो फिर आसपास के इलाकों के फीमेल्स ने भी इनको कहा, तो अभी जो है इनके पास दर्जनों जाते हैं, एक दफा कार्टन भी गया, एक दफा इनके पास कार्टन भी गया। तो इतनी प्यारी प्रोडक्ट है हमारी भाई, आप लोगों को प्यारा बनाने वाली, स्मार्ट बनाने वाली, एक्स्ट्रा चर्बी को बिल्कुल जी मेल्ट करने वाली। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: अब्दुल हादी स्टडी माशे,
2: क्या हाल है खलील भाई, की हाल है?
0: ओ स्टडी माशे यारा,
2: ये नतीजे
0: ये दो लफ्ज तूने मुझे सिखा है,
2: दगे
0: दगे
2: तंग दी तरह तो कपल तो दे पैर बनी दिया।
0: चलो ठीक है, स्टडी माशे तो इंदी तो कोई पैर हाथ नहीं बनेंदा यार, सीधी पश्तो वाला ना बैठना ना
2: तेरे ना ले पिया।
0: हां अच्छा अच्छा, यानी कि पैर हाथ बन के गया बंदा है जी,
2: उसके पैर बनी दिया।
0: देख इन नजर हसन तो समझ एक हम करे ससन तो आते गेम छोड़ दी थी है सही।
2: इसे कम है कि
0: अच्छा अब्दुल हादी, अब्दुल हादी कुछ है भाई, तो नहीं डस गया केसन दी प्रोडक्ट डस गया ना, कोई अपनी कुछ है फार्मूला वगैरह तो नहीं डस गया?
2: नहीं नहीं बस डसा था दादी बारे ने
0: सारे पास भी गरम है अपना टांग डेरे तो कितना फर्क है बिरा बहुत सारा आज की आज कितना काल मिले बेटा टेलनार थे या जोंग थे
2: ना जोंग थे
0: ठीक है तू सब आती में गिला करने वेग तोरा नंबर आन नहीं होंदा जी हुकम करे सो के पैगाम ले सो प्रोग्राम सुनने दे बाद के महसूस सिंदा पे इतने निवारा थी कि ना सब प्रोग्राम करने देखने 28 तारीख को आज 3 गई 12 तारीख यानी कि 14 निवारा दे बीच केसन दी कोई समझ आई है केसन दी
2: समझ तो आई
0: है दिमाग को गालियां बांधे पहन दिमाग मने दे दिमाग कुछ गालियां को मनेंदा है अब्दुल हादी कुछ सारे गालियां को तुम्हारा दिमाग मनेंदा भी है
2: जी मनेंदा तो पी है खलील भाई।
0: चलो ठीक है मान गए ने उन्हें बाद दूजा मरला होने पैसे लेवा मरदा जेले ओ मरला आवे तो मैं जरूर कॉल करनी है तसा ठीक है
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्यों नहीं क्यों नहीं।
0: ठीक है जी बहुत मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया
2: भगवान भाई को तेरा सलाम दे दो।
0: ठीक है जनाब ठीक हो गया बहुत शुक्रिया जनाब, तो मान भाई को सलाम कह रहे हैं रेडियो पैगाम वाले। और जनाब कौन है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मोहम्मद हमजा केमटा फ्रॉम मूसा वाली पिपला से, नेकी वो खुशबू है जो इंसान के जाने के बाद भी लोगों के दिलों में महकती रहती है, खूबसूरत प्रोग्राम है, सब लिसनर्स को सलाम हो गया जी, वालेकुम सलाम। आमिर अवान पाकिस्तानी फ्रॉम ग्लोबल FM 91।

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

खजी हुई सलाम अलैकुम विक्रम भाई फजर यमा सब सुनने वालों को सलाम वालेकुम सलाम भाई वही दरी टेमा प्रोग्राम दिया और हम मुबारक शाहिशा द कोट कश्मीर के लिए ना भाई जुबेद अनूर तुम्हें सलाम और का भाई प्लीज नंबर इरादा रासन का जोया द बाबलुली ना दुआ सलाम रली की हामिद द करक ने माया दई महक जमाडे रखोगे खोरदार टांक ना टांक के सदा में रमजान प्लाजा की जरबत खान जी सर प्रोडक्ट मिलावी की गर्मी डेर ज्यादा था कम खलको बांधे खारख राजी उबई सही न दी हवाई सही न दा बदन ही सही न दे गर्मी डेर रजिया था इश्मा हर्बल स्प्रे वाली कलता सो बदन विन सही अगेना बाद बदन उच कई हो बदा से बदन विन सही पर इश्मा एक नी साबुन सारा पे 150 रुपए की और इश्मा हर्बल स्प्रे पर बदन लगावई गर्म के खत्म दमाश व खारा खत्म और स जहरीला कीड़ा वगैरह तासो उखरी दागे बद असर खत्म जख्म स्पूणे टिकई और बो सर कमजे उस वजी अगवर सर टिकी की खुलम पखदा खुले के दनन इश्मा हर्बल स्प्रे का वले शे जुनेरा एंड जुनेशा द टक्कर ना जाफर शाह मामा द फोन पिली कमरा अगले उनाइला वजीर राइस फेस वॉश दे गोरे जबरदस्त दे नाइला वजीर भाई चे खोर में दरत सलाम कई वालेकुम सलाम खोरी सलाम अलैकुम इकराम भाई जद टांक ना टोलो खवाइंदो ता सलाम को मा वालेकुम सलाम इश्मा कॉस्मेटिक जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद थैंक यू इश्मा द टांक ना अयूब दलंडी जलंधर ना वकास कॉस्मेटिक स्टोर पंदू जमजम मार्केट ना केसर मोबाइल जोन इलाज मार्केट अलिशबाद नौखार ना दुआ सलाम रलीगी सलाम अलैकुम इकराम भाई मंजर शाह खुशहाल खान बाबा मजार ना सलाम अलैकुम इकराम भाई संग ये मैसेज में सही रेट का देर ज्यादा दगराने इकराम भाई फायका फातिमा कायनात दा मैसेज राली की द लंडीवाना लंडीवा की जमील खान सना जमाद इश्मा तमाम प्रोडक्ट मिलावीगी सिंगा तासो ता कारी नूर खिताब से खबर ओगड़ गया अखोड़े रे खबरे ओगड़े यो खबरे पके ओगड़ द क्रैक क्रीम चेता चा पुंदी खराबी चपलो इस्तेमाल शो क्रेक क्रीम लगा भाई क्रेक क्रीम यवाज़ इधर पुंडो द पारा नहीं दी पुंड खो बदर लटिक की खुलम पखई खुले के धना न लगा वाले शे जबरदस्त कार कई दीन इलावा माशुमान डायपर पैंपर दवा जे पाखशी दा हुई द पारे इस्तेमाल वाले शे कमजी बांधे जख्म दे स्पून दे खारख दे गुतो दा सुकी या द गुतो दा मंजूनो गुरतू न खराब दी फंगस मसली दी इश्मा क्रेक क्रीम इस्तेमाल भाई आवाज कट शो फजलमी रेडियो बांधे दा भाई आबेदा सो गम आबेदा मैसेज बोर्ड हो गम खान